0: सुंदर मनमोहक
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 7 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: मैं तुम्हें यहाँ रोज आते हुए देखता हूँ, अकेले किसी का इंतजार कर रही हो।
1: तुमसे मतलब? ओ शिट, आई एम गेटिंग लेट।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: कागज के में थी वा
1: आ झिल्काई
0: के पर्सनल नम्बर ब्लक लाई वा दिए
1: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनी यो टेलिकमर बे अफिस तरी आएर ब्लक लाई र खलखाई
0: अनि बैंगरी
1: बैंगरी
0: आ
1: चार चाहिँ तले लगपर्दी
0: समलल पति न आफैन मोबाइल नम्बर फेर दिया बदेर ब्लक तय विषय आफैन बैंक दे बिनी जानकारी पिन परिम दे आफैन बैंक खातैन जानकारी अरुइन योरी थोनी दक्या सचेत तल परिम
1: सतर्क तना ठगी तब्द क्या जोगिना
2: सिद्धार्थ बैंगर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
3: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
0: यो मोबाइलले पनि तनावै दियो भने
4: हैन के तनाव दियो ए खुशी
0: हेर न अस्ति भर्खर बनाएर ल्याएको फेरि बिग्रियो हैन मर्मत गर्ने गतिलो पसल कतै छैन
4: छ नि किन नहुनु हाम्रै बेसी सहरको पुरानो बैंक चोक नजिकै रहेको जनता मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स पसलमा दक्ष एवं अनुभवी व्यक्तिहरूबाट मोबाइल मर्मत गरिन्छ नि
5: हामी कहाँ सामसुङ रेडमी भिभो टेक्नो ओप्पो नार्जो रियलमी लगायतका ब्रान्डेड मोबाइल सेटहरू पाइनुका साथै बिग्रिएका जुनसुकै ब्रान्डका मोबाइलहरू दक्ष एवं अनुभवी व्यक्तिहरूबाट मर्मत गरिन्छ साथमा इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पनि उपलब्ध छ
4: प्रोप्राइटर शम्सुल आलम जनता मोबाइल इलेक्ट्रोनिक्स पसल बिक्री तथा मर्मत केन्द्र बेसीसार नगरपालिका साथ पुरानो बैंक चोक रोशन फ्रेस हाउस सँगै लमजुङ थप जानकारीको लागि सम्पर्क 98 4 95 94 0 46 98 13 09 49 32

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी
3: तपाईँ रेडियो मर्सेन्जी एफएम 55

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: तपाईको आफ्नै रेडियो रेडियो मर्स्याङ्जी एफएम 95 मेगाहर्ज। एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 9 बजेको छ।
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.